0: सुनो सुनो सुनो
1: चमचम चम की जबकारी रे बदरिया हो जाओ होशियार, चमचम चम की जबकारी रे बदरिया हो जाओ होशियार।
0: कागज पत्र जरूरी सामान बांध के हमरे हो जाए तैयार, कागज पत्र जरूरी सामान बांध के हमरे हो जाए तैयार।

धारा पखाला रोग से बची सब कुछ जाने, धारा पखाला रोग से बची सब कुछ जाने।

0: होंडा सँगै यो दशैंमा आशाको शुरुआत गरौं। स्क्र्याच कुपन मार्फत 1,00,000 सम्म जित्ने मौका। चुज एनीवन स्कीम अन्तर्गत थप्रो 10,000 सम्मको स्क्र्याच कुपन, 7 वर्षसम्म फ्री सर्भिसिङ अथवा 5 वर्षसम्म एएमसी र होंडा छ 7-7 अन्तर्गत विजेतालाई जितेको रकम प्रदान गर्दै सोही बराबरको रकम होंडा नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्नेछ।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो
2: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना

0: दोस्रो शनिबार काठमाडौँकी वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बु सेवा देती रहल बा मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठिक नै हुइल घाउ खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा सम्पर्क मनिष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9846774417
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के उस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी ही जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 026

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां क्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब भी अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली फात्रो मफे सुन्ती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। जानकी गांवपालिका में विपद प्रतिकारीय में विद्यार्थी होकरण जानकारी कराई थी। विपद पासे के राहत में राहत रो आवास के मापदंड अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हुई पर्ना। आस्तराई पहाड़ो हिमाल में वर्षा और हिमपात की संभावना। कांग्रेस महाधिवेशन के दूसरा दिन आज बंद सत्र शुरू हुई थी। 15 वर्ष से सिलाई कटाई व्यवसाय में रमैती टीकापुर के रीता चौधरी। सीप सीखना हो मेहनत करना युवा हुकरन रीता के सुझाव। ओ टीकापुर के 12 वर्षीय मानवी साउट कैलाली डांसिंग स्टार के फाइनल चरण में प्रवेश। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से हाल देश के मानसूनी वायु पश्चिमी वायु के दोहरो प्रभाव परल जनाइल बा। कर्णाली सुर पश्चिम प्रदेश के साथे गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के पश्चिम भूभाग में पश्चिमी वायु के असर परल बा। हाल देश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में आंशिक से लेके साधारणतया मौसम बदलना महाशाखा से जनाइल बा। लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग में आंशिक मौसम बदलन रहे से फिर बाकी तराई क्षेत्र में मौसम मुख्यतया सफल रहना कहलवा। कोशी प्रदेश के कम स्थान और बागमती तथा लुम्बिनी प्रदेश के एक दो स्थान में हल्का वर्षा होती रहलवा। आज कर्णाली सुदूरपश्चिम में हिमाली भूभाग में एवं देश के तराई क्षेत्र में भर आंशिक मौसम बदलना अनुमान करलवा। दोपहर के रात के समय में कोशी बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में कम स्थान में मध्यम वर्षा तथा हिमपात की संभावना रहलवा। कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली भूभाग में एक दो स्थान में हल्का वर्षा वा हिमपात हुई सकना अनुमान करगिल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनाइलवा। नेपाली कांग्रेस के 15 महाधिवेशन अंतर्गत दोसरा दिन आज बंद सत्र संचालन हुईना के साथ ही केन्द्रीय सदस्य कार्य समिति चयन के राह निर्वाचन प्रक्रिया मफे समेत शुरू हुई थी। इसी काल ही काठमांडू में उद्घाटन सत्र सम्पन्न हो पाछे बिहान की 9 बजे से बंद सत्र शुरू हुईना लागर प्रवक्ता देवराज शाली से जानकारी दिले बाटे। बंद सत्र में पार्टी के सभापति गगन थापा उपसभापति विश्व प्रकाश शर्मा से राजनीतिक तथा समसामयिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना कार्यतालिका रहलवा। यह बीचमा महाधिवेशन अंतर्गत के केन्द्रीय निर्वाचन समिति से सार्वजनिक करल कार्यतालिका अनुसार सांस से लेकर निर्वाचन में संबंधित प्रारंभिक प्रक्रिया आगे बढ़ना बताया गया बा। टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 समितिपुर के रीता चौधरी 15 वर्ष से सिलाई कटाई व्यवसाय करती बाट। 2068 साल से सिलाई कटाई व्यवसाय में लागल रीता अपन पेशा व्यवसाय में प्रति एकदम संतुष्ट रहल बाट। दीदी से डेलक एक ठो कपड़ा सिलाईना मशीन से घर के कोठा में सिलाई कटाई व्यवसाय शुरू करलक रीता। अब सिलाई कटाई व्यवसाय में मजा संगे जमल बाट। प्रोट कक्षा पढ़ के साक्षर बनल 37 वर्ष के रीता सिलाई कटाई व्यवसाय में मजा आमदानी हुईती रहल बा। वहां अब ऑनलाइन मार्केटिंग सम करती रहल बाट। वहां आपन व्यवसाय में रलक आमदानी से छाई छावा पहिना से लेके घर खर्च चलैती बाट। अब रीता के छावा फे वहां है सहयोग करती बाटिन। कक्षा 12 पास करलक छावा फे सिलाई कटाई के काम सीखती संगे संग काम करती रहल बाटिन। कक्षा 12 पढ़लक छाई फे विद्यालय बाहेक के खाली समय में अपन दाई हे सहयोग करती बाट। रीता सिलाई कटाई सीखना समेत धोखा भर समेत ओस्तहा पूरा समेत हुईलक और सिलाई कटाई प्रति के लगाव और मेहनत समेत रीता हे यहां संपुगैलक और वहां अपन विगत हे समेत समझथ। टीकापुर नगरपालिका से प्रदान करलक तालीमा सिटी भीटी से संचालन करलक तालीमा फिर सहभागी हो कि रीता सिलाई कटाई व्यवसाय के काम सीखलक वहां दोसरो लेवल के समेत तालीम पास कर सकल बाट वैदेशिक रोजगारी में रहल श्रीमान के साथ सहयोग में फिर अपना यहां सम पुगलक बटोती रीता आविन फिर समेत दोसरन तेसर लेवल के तालीम लेना हो अपना हाँ समेत कपड़ा सहित की सिलाई कटाई व्यवसाय संचालन करना सोच बनाएल बाटे वहां के घर में कोठा से लेके एक ठो मशीन की सहायता से शुरू हुई लग सिलाई कटाई व्यवसाय में अब 13 ठो लुगा सिलना मशीन बाकल से 6 जहाने रोजगारी समेत देहल बाटे और सिलाई कटाई सीखना और यह हुकरन फिर रीता तालीम देते पेशा व्यवसाय प्रति लगाव और मेहनत मा विश्वास करना रीता अपना जस्ते और महिला हुकरन फे मेहनत करना हो सिर्फ सीखना सुझाव देले बात है। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास से फिर से भी सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM।
1: लो इतनी छिटो आमा बन लागो तो
2: बेला भागन नचा बनती घर में सक न सके सब काम कर काम कर विदेश जानूनी के नगर्नी के जन्म पड़े जस्ते
1: जो राम पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह करें आपको वर्तमान भविष्य दुबे अन्योल में पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना। टीकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुरको 15 वार्षिक तथा 5 चुनावी साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि। स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टीकापुर। जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुर कैलाली।
3: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
0: विश्राम पासे फेर से स्वागत बा। विपदमा पर्लक नागरिक हुर्करण उपलब्ध कराइन आवश्यक पर्न सरसफाई राहत तथा आवास के अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के बारे में छलफल करगिल बा। विपद के बारे में समेत पर्लक नागरिक हुर्करण राहत देना बनायल स्पेयर मापदण्ड है अन्तर्राष्ट्रिय स्तर के मापदण्ड मानजैत। विपदमा पर्लक मनन के खाने पानी सरसफाई स्वास्थ्य प्रवर्धन खाद्य सुरक्षा पोषण आवास और स्वास्थ्य करके चारथो सहयोग करना यी मापदण्ड अनुसार नै हुई पर्ना हो और विपद में आए कहके योजना बनाके चेतना में समेत जगैना सहयोग करना में फिर समेत चेतमान साउट के कहाईबा। दिगो विकास समाज भजनी के आयोजना में हुई कार्यक्रम में बोलती जानकी गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी से दुख लन्ना विपद से और दुख के बेला में फे मानवीय जीवन सहज बनाईनाकलाग अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पालना करे पर्ना बटोले बाट। उपाध्यक्ष लालमती देवी कठरिया राहत वितरण करने क्रम में कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि हुकरात राजनीतिक पूर्वग्रह आफन्त प्रायजेशन समेत भावना से प्रभावित नहीं हो कि मानवता की नाता से राहत पुनर्स्थापना के काम कर पर्ना बटोले बाट। टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्डाध्यक्ष मोहन बिका विपद और राहत व्यवस्थापन करना नगर पालिका की आपनी गतिविधि रलकमा एमना हरेक कमी समेत पहचान करके अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हो। मजा सिकाई समेत प्रयोग करती एकरूपता लड़ना बटोले डिगू विकास समाज भजनी के अध्यक्ष आशा चौधरी विपद में परिचालन हुना पहल निकाय स्थानीय तह रलकोर्से स्पेयर मापदंड के बारे में था पैना विपद जोखिम न्यूनीकरण हो छिटी विश्लेषण में सहयोग पुग्ना बटोले जानकी गांवपालिका के धर्मापुर में मौसम पूर्वानुमान में आधारित विपद पूर्व कार्य संगे संबंधित मौलिक तथा लोक नृत्य प्रतियोगिता हुईबा कार्यक्रम में विद्यार्थी पढ़ाई शिप विकास संगे सृजनशील विकास समेत विपद संबंधी सचेतना फैलन रले कोर्से यी कार्यक्रम महत्वपूर्ण रलक सरोकारवाला हंकरण के कहाईबा शिक्षक मथुरा भंडारी विपद पूर्व कर्जिना तैयारी के संबंधी विषय में संबंधित कार्यक्रम रलक ओर से यी कार्यक्रम से विपद से हुई सेकना मानवीय भौतिक क्षति कम करना में सहयोग पुग्न बटोले और शिक्षक दुर्गा रावल सेफे कार्यक्रम यी पढ़ाई संगे विद्यार्थी उपकरण की सृजनात्मक क्षमता विकास होइन हो विपद न्यूनीकरण में सहयोग पुग्न बटोले शिक्षक हेमंत रेग्मी सेफे कार्यक्रम से सचेतना संगे विद्यार्थी उपकरण के सर्वांगीण विकास करना बटोले शिक्षक रोशन बहादुर चंद से कार्यक्रम में आधारभूत प्राविकी विद्यार्थी उपकरण सहभागी करैले से झन मजा हुईना बटोले शिक्षक टीकाराम चौधरी कार्यक्रम में मौलिकता झलकना यी कार्यक्रम मजा रहल हो ऐसी खाले कार्यक्रम निरंतरता देना आवश्यक रहल बटोले टीकापुर के 12 वर्षीय मानवी साउट कैलाली डांसिंग स्टार के फाइनल चरण में प्रवेश करल बाट साउट 10 थो चरण पार करती तब 13 में पुगल के हुए रॉयल डांस स्टूडियो सुखड़ से आयोजित स्टार फाइनल में असोच 31 गते करना कहलवा साउट टीकापुर स्थित के आरएमई स्कूल में कक्षा 7 में अध्ययनरत छात्र हुए छोटी उमेर से वहां नचना एकदम मन परेना साउट विद्यालय के प्रार्थना में फे आपन शरीर हिलैना नाच नचना समेत नचनाच लग्ना बटोटी आयल बाट हाल मानवी तमाम विद्यालय में विद्यार्थी व आफन्त हुकन संगे भोट मंगती बाट खोजखर में फेन्से विश्राम पास फेरसे बी सुनते बी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
6: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9046774417
8: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै छु

क्षेत्रमा स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा स्थानीय तहमा जैन नैमल्ल कोर्से स्थानीय तहकै सेवा प्रवाह विकास निर्माण सुशासन कमजोर बन्ती गैलबा स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हे संघीय सरकार से समेत खटन पटन करबे कयौं स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधि से समेत खटाई कर्मचारी कुरा हाजिर नै कराके संघीयमा फिर्ता पठाइन करलबाटै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवकै नै होइन व्यवस्था करलबा हाल स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भर स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकार से समेत संघीय सरकार के नै समेत यी प्रतिनिधि उक्रण खटैना समेत कहलबा प्रस्तावितमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के व्यवस्था रलक ओ समेत स्थानीय ऐनमा स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटैनामा यी व्यवस्था करलक बटागिलबा सरकार से स्थानीय सेवा के आधिकारिकता वृद्धि करना हो सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेवक नै हुइना करके विधेयकके व्यवस्था करलबा भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय से स्थानीय सेवक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुइबेर स्थानीय सेवकके प्रभावकारिता वृद्धि हुके तर तहके नागरिक उक्रणमा सेवामा थप सहज हुइन जनागिलबा मन्त्रालयके सहसचिव प्रकाश दाहाल से संघीयता कानूनमा सहज गर्न औ स्थानीय तहकै कर्मचारी उक्रणके मनोबल उच्च पारकलक स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवक नै हुइन करके विधेयक प्रस्ताव करगिल बतागिलबा सरकार से ऐन निर्माण करके स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के रिक्तता हुई नै देना स्थानीय सेवकके कर्मचारी उक्रणके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतके रूपमा खटैना सेक्ना व्यवस्था करल उहाँ बटोलेबाट प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एकठो स्थानीय सेवा रहन औ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतके पद स्थानीय सेवक नै रहन उल्लेख करगिलबा महानगर उपमहानगरपालिकाके अधिकृतमा 11 तह नगरपालिकाके मा 10 तह औ गाउँपालिकामा 8 तहके कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुना व्यवस्था विधेयकसे करगिलबा दशैं तिहार समेत लग्गह संगे मुस्ताङ के भेड़ा च्याङ्रा के व्यापारी चहल पहल शुरू हुइलबा क्रममा मुस्ताङ के जोमसुम मनसे उपरक दोलपा के भेड़ा च्याङ्रा के बठान नै आपुगल बटागिलबा उपल्लो मुस्ताङ मनसे भर शनिचर के सम भेड़ा च्याङ्रा के जोमसुम समेत आपुगल बटागिलबा आपन 500 सहकर्मी सहित करीब 1000 से ढेर भेड़ च्याङ्रा शनिचर के सांस के जोमसोम आपुगल डोल्पा के व्यापारी शेरबहादुर रोकाया जानकारी दिलेबाटै डोल्पा मन से जोमसोम आपुगलक रोकाया हे समेत एक साता से ढेर समय लागल बा वहां विगत 30 दिन से समेत च्याङ्रा के व्यापार करते आयल जानकारी दिलेबाटै 30 वर्ष से च्याङ्रा के व्यापार करते आयल बाटै ई पटक हिउँ छिछोल्टी जोखिमपूर्ण यात्रा करके फे च्याङ्रा जोमसोम लानल वहां के कहाइबा कर्णाली प्रदेशमा आगामी 16 से लैके 27 मंगसिरसम्म 10 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना प्रतिभा प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशके अधिकांश जिल्लामा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव करगिलबा प्रतियोगितामा महिला तथा पुरूष तमाम विधामा 32 थो खेल समावेश हुइतिबा प्रतियोगितामा 7 प्रदेश 3 थो विभागके टोलियो गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन सहितके 11 थो टोलीमा खेलाड़ी सहभागिता जनाइनेबाटै अटवारके सुर्खेतमा पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिताके समावेश गर्जिना खेल प्रस्तावित खेल स्थल प्रतियोगिताके बारेमा जानकारी करागी लेखो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्णाली खेलकुद परिषदके विकास परिषदसे प्रतियोगितामा निर्धारित मितिसँगै सम्पन्न गर्न करके आगे बढ़ेला जनाएल कर्णाली सामाजिक विकास मन्त्री जीत बहादुर मल्ल बटोलीबाटै

यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से जानकी गांव पालिका में विपद प्रति कार्य के विषय में विद्यार्थियों करण जानकारी देती विपद में राहत और आवास के मापदंड अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हुई पर्ना आज तराई पहाड़ और हिमाल में पानी पर्ना हिमाल में हिउँ के संभावना कांग्रेस महाधिवेशन के दूसरा दिन आज बंद सत्र शुरू हुई थी 15 वर्ष से सिलाई कटाई व्यवसाय में रमैती टीकापुर के रीता चौधरी सिर्फ सीखना और मेहनत करने युवा हुकरण सुझाव टीकापुर के 12 वर्षीय मानवी साउट कैलाली डांसिंग स्टार के फाइनल चरण में प्रवेश लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी आबे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते विराम राम।

0: थ्री इन वन के साथ।
1: आई
0: लव इट टू। हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
1: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस।

0: पनि भगवानलाई पनि मन पर्छ।
1: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजी ठ काकना हो बाबा फि होस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहरे
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुई थी जरम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटा कै ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिकठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो ओट का हो टीकापुर म रलक रगे यहाँ झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुईन कैक आनल झोला जसका टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना सिया कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकरल झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
4: आरती ब्यूटी एंड कस्मेटिक मा सौंदर्य र श्रृंगार को लागी विभिन्न ब्रांड का कस्मेटिक सामग्री पाइनु का साथ है थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लर को सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ
5: संचालक आरती चौधरी संपर्क नंबर 98624-70483

0: होंडा सँगै यो दशैंमा आशाको शुरुआत गरौं। स्क्रैच कुपन मार्फत 1,00,000 सम्म जित्ने मौका। चुज एनी वन स्कीम अन्तर्गत थप रु 10,000 सम्मको स्क्रैच कुपन, 7 वर्ष सम्म फ्री सर्भिसिङ अथवा 5 वर्ष सम्म AMC र होंडा 6/7 अन्तर्गत विजेतालाई जितेको रकम प्रदान गर्दै सोही बराबरको रकम होंडा नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्नेछ।
1: शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टिकापुरको सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना। शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूलाई यही असोज 10 गतेदेखि 25 गतेसम्म आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु पर्ने भएकाले सामुदायिक वनका सम्पूर्ण सदस्यहरूले असोज 25 गते भित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। अध्यक्ष कर्ण बहादुर बुढा, शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टिकापुर 2 राजीपुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपारके तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: सुरक्षित जीवन जीउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे भोज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनेना पट्टा नि पैना त
2: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन ल बाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 98486 39261।

0: काफी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर आई थी राहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकटो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: दाजु विवाह को तैयारी तो शुरू भयो तर पूजा का सामान कहाँबाट ल्याउने होला
4: त्यसको चिंता किन गर्छौ बहिनी मंगलेश्वरी पूजन भंडार छ नि त्यहीबाट ल्याउला विवाह तथा शुभ कार्य का लागि चाहिने पूजा का संपूर्ण सामग्री माला टीका कलश धूप दीप का साथ ही ज्योतिषी परामर्श तथा संपूर्ण कर्म कांड लगायत आवश्यक सामग्री एक पाइन्छन्
3: ओहो त्यसो भए विवाह को पूजा को सामान खोज्दै धेरै पसल धाउनै नपर्ने रहेछ नि
4: हो नि बहिनी गुणस्तरीय सामान उचित मूल्य र आवश्यक सामग्री को राम्रो व्यवस्था सबैका लागि मंगलेश्वरी पूजन भण्डार
3: त्यसो भए विवाह को सामान पनि मंगलेश्वरी पूजन भण्डार बाटै लिन जाऊ है
4: अवश्य तपाईको शुभ कार्यलाई अझ मंगलमय बनाउन एक पटक आउनुहोस्
5: मंगलेश्वरी पूजन भण्डार टीकापुर 4 चौतारी नजिकै संचालक छत्रराज उपाध्याय सम्पर्क नम्बर 98 66 27 27 99

0: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्के तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चक्की पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810 62 35 47।
2: Coffee ready.

0: आई लव यू टू। हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
1: मंगलदीप सेंट 3-in-1 परफ्यूम लाइक फ्रेग्रेंस।
2: आरती ब्यूटी एंड कस्मेटिक मा सौंदर्य र श्रृंगार को लागि विभिन्न ब्रांड का कस्मेटिक सामग्री पाइने का साथ ही थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लर को सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ।
3: संचालक आरती चौधरी, संपर्क नंबर 98-624-70-483।
4: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
5: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
4: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो, यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
7: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाड़, खुजली, हुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

0: कबू कापी रहीठ कबू पेन्सिल रहीठ कबू झलै फटाका आजिठ काकना हो बाबा फिर ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कैठ कबू पेन्सिल हेरा कैठ कबू झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं छिपठो
1: अरे कहाँ से नानम तो
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कापी हेरी थी ना कबू पेन्सिल हेरी थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: लक्ष्मी आभूषण भण्डारमा छड्के तिलहरी माइली तिलहरी रामलीला झुम्का पिजडा झुम्का बाला औठी पेन्डल चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला लक्ष्मी आभूषण भण्डार सिद्धार्थ चोक टिकापुर कैलाली संचालक प्रकाश भण्डारी सम्पर्क नम्बर 98484-6595

0: सुनो सुनो सुनो
1: चमचम चम की सरकारी ने बदरिया हो जाओ होशियार, चमचम चम की सरकारी ने बदरिया हो जाओ होशियार।
0: कागज पत्र जरूरी सामान बांध के हमरे हो जाए तैयार, कागज पत्र जरूरी सामान बांध के हमरे हो जाए तैयार।

0: हे भगवान सुनो दादू भैया सुनो दीदी बाबू
1: सुनो दादू भैया सुनो दीदी बाबू
0: सुनो दादू भैया सुनो दीदी बाबू सुनो सुनो सुनो
1: सुनती रही मौसम की खबर के पूर्वानुमान सुनती रही मौसम की खबर के पूर्वानुमान
0: लापरवाही नहीं करो कब का हो जाए मोरे राम लापरवाही नहीं करो कब का हो जाए मोरे राम।

0: सारा पखाला रोग से बची सब कुछ जाने, सारा पखाला रोग से बची सब कुछ जाने।
1: हाँ।

0: तराजू, डिजिटल तराजू तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स,
1: पुरानो ट्रिनिटी स्कूल भएको भवन टिकापुर,
2: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा, सम्पर्क फोन नम्बर 98484463673 र 98164680204।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाई, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाए।
1: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज इठा का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कही था कभू पेंसिल हेरा कही था कभू झोले फटा कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकरा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुर कैलालीको 9 वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना। साना किसानका लागि लगानी ल्याउँछौ सुनौलो बिहानी। आउँदै गरेको बडा दशैं, शुभ दीपावली, नेपाल सम्बत एवं छठ पर्वको अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण शेयरधनी, शुभचिन्तक, पत्रकार, समाजसेवी एवं देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्णमा सुख शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यही मिति 2083 साल कार्तिक 8 गते आइतबारका दिन टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा हुन गइरहेको श्री जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 9 वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि सादर आमन्त्रण गर्दछौं। स्थान टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहाल, समय बिहान 10 बजेदेखि। आयोजक जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार, टिकापुर कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर 0915606141, मोबाइल नम्बर 98432886713।
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्डे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
2: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका अनसे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई और जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर, प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए, रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए, वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684140208 और 98486391।

0: सामुदायिक रेडियो टिगापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। मंत्री परिषद के 5 निर्णय सार्वजनिक, सरकार विपद व्यवस्थापन में प्रदेश और स्थानीय तह संघ के समन्वय में निरंतर खटि रहल प्रधानमंत्री बालेन शाह। कांग्रेस के 15 महाधिवेशन में उपसभापति विश्व प्रकाश शर्मा, लोकतांत्रिक संस्कृति बेगार के लोकतंत्र निराश प्रक्रिया केल रहना वहां के कहा। वो आगामी 16 मंगसिर से कर्णाली के 10 राष्ट्रीय खेलकूद 32 खेल में प्रतिस्पर्धा हुई ना। सरकार से सोमवार के बैठल मंत्री परिषद के बैठक में 5 निर्णय सार्वजनिक करलवा। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल से बैठक पाछे के मंत्री परिषद के निर्णय सार्वजनिक करती। नगरपालिका के स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण के प्रवर्धन करना कार्यक्रम के लग समेत नॉर्वे जीएन सरकार से प्राप्त हुईना 10 करोड़ रूपया बराबर के अनुदान सहायता स्वीकृत करना स्वीकृति देना निर्णय करल जानकारी करागिल बा। बैठक से नेपाल इंजीनियरिंग सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन हो नियुक्त दोसरा संशोधन नियमावली स्वीकृति करल बतागिल बा। शंकर के वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली 2083 स्वीकृत कर सकल बा। शंकर जयंती आंदोलन संगे सम्बन्धित घटना में फौजदारी अभियोजन रलक मुद्दा में समेत फिर्ता कर सकना वा नई सकना संबंध में समेत छानबीन करके सिफारिश करना पूर्व न्यायाधीश बाबूराम रेग्मी की अध्यक्षता में गठित समिति से पेश करलक प्रतिवेदन आवश्यक समेत कार्यथार्थ गृह मंत्रालय में पठेना निर्णय करल बतागिल बा। शंकर के सह सचिव पद्म कुमारी मैनाली नेपाल इंजीनियरिंग सेवा समूहीकरण ओर के सचिव पद्म बरुआ करके पूर्वाधार विकास मंत्रालय में पदस्थापन करना निर्णय करल प्रवक्ता पोखरियाल बटैले बाटै। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह संघ प्रदेश और स्थानीय सरकार बीच के आपसी समन्वय में उच्च प्राथमिकता साथ विपद व्यवस्थापन के काम हुई रहल बटैले बाटै। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में बैठक विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रीय परिषद के 21 बैठक में प्रधानमंत्री शाह सरकार के कौन फे मेयर के समेत समझौता नहीं करके विपद व्यवस्थापन में निरंतर खटिरलक स्पष्ट पर्ल बाट। प्रधानमंत्री शाह मुख्यमंत्री हुकरण लक्षित करती उपलब्ध स्रोत साधन हो जनशक्ति के परिचालित करके हाली से हाली विपद व्यवस्थापन के काम करना और यमना ई विषय लैके समेत अपना ढुक्क होने फे आग्रह कर बैठक में गंडकी बागमती मधेश और कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुकरफे सहभागिता जनायल रहें। कांग्रेस के 15 महाधिवेशन में उपसभापति विश्व प्रकाश शर्मा प्रतिवेदन पेश करती लोकतंत्र के व्याख्या करल बाटे। वहां लोकतांत्रिक संस्कृति बिना के लोकतंत्र प्रक्रिया में केल सीमित रहना धारणा धरल बाटे। वहां अब के अवस्था में लोकतंत्र के अवस्था मा समेत कैसिन हुई रहल कहना फिर व्याख्या समेत कर बाटे। निर्वाचन में हुईना और निर्वाचन पाछे सरकार के नेतृत्व चयन प्रक्रिया है समेत अब के दुनिया में उन्नत लोकतंत्र के रूप में परिभाषित कर सकना समेत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विख्यात दुई विद्वान हुकरा कहल अनुसार समेत लोकतंत्र मरस्ते जय मनो सैनिक जनरल के समेत बंदूक से नहीं हुके निर्वाचन नेतृत्व के हाथ से केल समेत मुलुक के कानूनी विधियों संस्था के मर्यादा धरना हो कल से न्यायिक व्यवस्थित समेत स्वतंत्र प्रेस के मर्यादा समेत भटकायल कहना बुझे पड़ना लोकतंत्र के अस्थिर पंचर केल समेत बाँकी रहलो बाँकी रहट कहलबाटै विश्वव्यापी रूपमा यी चिन्तन जो समेत विश्लेषण जे करत करती आइलबा यह नै आजके नेपालके वस्तुगत स्थितिके इमानदार समीक्षा साथ समेत न जननिर्वाचित सरकार समेत जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुँक्रा एक साथ गहिर मनन गर्न जरूर रहल बतैले बाटै खोजखबरमा एक घरी विश्राम विश्राम पाँच फेर सेवी सुन्तिर बी सामुदायिक रेडियो टिगाप्र एफएम
1: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होस्या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
0: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: के तपाईलाई थाहा छ
3: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
2: हो र
3: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
2: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
2: के छ त विकल्प
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
2: विस्तारै गर्दा हुँदैन
3: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
4: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइती। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उक्रा संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
5: सुन्नुहोस् न यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
6: ए हो र गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त
5: हुन्छ नि आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि
6: त्यसो भए आजै जाउँला नि
5: ल अरूलाई पनि भनौँ है।
6: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
7: सिर्जना सुनचाँदी पसल तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
6: सिर्जना सुनचाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार सम्पर्क नम्बर 98-095-43-893।
0: गृहमन्त्री सुदन गुरूङ भारत जैनहुलबाटै उहाँ बंगलाकै खाड़ी बहुक्षेत्रीय प्रविधि तथा आर्थिक सहयोग पहल बिमस्टेकमा समेत सहभागी हुन भारत जाइ लागलकी हुई। गृह मन्त्रालयमा स्रोतकी अनुसार असोज 26 गते प्रस्थान गर्न लागल। बटागिल्बा बैठकमा तमाम साथ थो। देशकी गृहमन्त्री सहभागिता जनाएबाटै नेपाल सहित बंगलादेश, भूटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका और थाइल्याण्डकी गृहमन्त्री उ बैठकमा सहभागिता रहन जनाएबा। सरकार भोटेकोशी बाढ़ी प्रभावित हुक्रनकेला पाचक समयमा मनसून जन्य बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण पुनस्थापना के लाख 5 खर्ब से ढेर आवश्यक पर्न जनासेकल्बा। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में प्रधानमंत्री बालिन शाह के अध्यक्षता में बैठल विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रीय परिषद के 21वीं बैठक से मंत्रालय निकाय मन से प्राप्त होना 504 समेत योजना तथा कार्यक्रम के लाख रू 5 खर्ब 69,70,72,27,000 रूपया स्वीकृति के लाख अर्थ मंत्रालय में सिफारिश करना निर्णय कर सकलबा। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077 बमोजिम स्वीकृत हुई ई योजना के लाख अर्थ मंत्रालय में आधार सेवा व्यवस्थापन करना हो। उसमें करके लागत अनुमान समेत नहीं खुला को प्राथमिकीकरण समेत होना बाकी आयोजना के विवरण प्राप्त हुई पाछे आवश्यक बजेट के व्यवस्था के लाग अर्थ मंत्रालय में सिफारिश करना राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरण इकाई है समेत प्राधिकरण है निर्देशन दई सकल प्रधानमंत्री के सचिवालय से जनाएलबा। बैठक में प्रधानमंत्री शाह से विपद व्यवस्थापन के काम संघ प्रदेश और स्थानीय सरकार के समन्वय में हुई रहो आप पुनर्निर्माण और पुनस्थापना में फे उहे अनुसार समेत करना बटागिल्बा। ओ काममा विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसके सांसदीय दलकी नेता भीष्मराज आङ्गबे बागमती गण्डकी मधेसो कोशी प्रदेशकी मुख्यमन्त्री हुक्राफे आफन पूर्ण साथ रहन उल्लेख गर्नबाटै सरकार जेएनजी आन्दोलन सँगै सम्बन्धित मुद्दा सम्बन्धी छानबिन हो गठित समितिके प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ केला गृह मंत्रालय में पठाइना निर्णय करलबा। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय सिंहदरबार में बैठल मंत्री परिषद के बैठक से जेएनजी आंदोलन संगे संबंधित घटना में फौजदारी अभियोजन रहल मुद्दा फिर्ता कर सेकना नई सेकना संबंधित में समेत पूर्व न्यायाधीश बाबूराम रेग्मी की अध्यक्षता में गठित समिति से पेश करल प्रतिवेदन में आवश्यक कार्यार्थ करना गृह मंत्रालय में पठाइना निर्णय काल सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल जानकारी दिलबाटै। असिन नगरपालिका हुकनमा स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण प्रवर्धन करना कार्यक्रम के लाग नर्वेलियन सरकार से प्राप्त हुना करीब 10 करोड़ नेपाली रूपया बराबर के अनुदान सहायता फे स्वीकृत करना पोखरेल से बता सकल बाटै। खोज खबर माए घरी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
8: आई हो बड्डो घर कहिया सिजैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजा सेकल।
9: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
8: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट एल्युमिनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे वस्त बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो होना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
10: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में एल्युमिनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
11: मिलन एल्युमिनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
12: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
13: कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
12: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खट्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, गण्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
13: डाक्टर आउने दिन कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबार
12: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825677772।
0: विश्राम पाठक फेर से स्वागत बाबै। कञ्चनपुरमा लागू औषध सहित प्रायः 1 जनालाई पक्राउ गरलबा। भीमदत्त नगरपालिका 11 भुजेला क्षेत्रमा लागू औषधकी कारोबार हुइतिरल गोप्य सूचनाकै आधारमा खटल प्रणाली तोरिसे भीमदत्त नगरपालिका 18 बाँडी बैठना 27 वर्षके आशुतोष सिन्हाहे नियन्त्रणमा लेहल के हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरके अनुसार उहाँ काली चेक जाँच गरबेर सिनाल से बाँके के समेत रातो लेदर के समेत छोला भित्र लुकायल अवस्थामा फेला परल। फेनार रगन समेत 63 एम्पुल समेत ओ बी 63 एम्पुल करके समेत जम्मा 126 थो समेत एम्पुल लागू औषध बरामद करल बताएगिल बा। ऊ लागू औषध सहित पक्राउ परल। सिनाल नियन्त्रणमा लैके कानून बमोजिमके आवश्यक अनुसन्धान हुइतिरहल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरके सूचना अधिकारी प्रहरी नायक उपरीक्षक तेग बहादुर राउत जानकारी दिने बाटे। कर्णाली प्रदेशमा आगामी मंगसिर 16-27 गते सम 10 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न कहलबा। प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशकी अधिकांश जिल्लामा सञ्चालन हुन प्रस्ताव गरिगेलबा। प्रतियोगितामा महिला तथा पुरूषके तमाम विधामा 32 थो खेल समावेश गरल बतागिल्बा। प्रतियोगितामा 7 थो प्रदेशके 3 विभागीय टोलियो, गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन सहितकी 11 थो टोली खेलमा सहभागिता जनाइना कहलबा। सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिताकै बारेमा समावेश गर्जिना खेलके प्रस्ताव, खेल स्थान ओ समय तयारीके बारेमा जानकारी गराइगेल रह। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। मंत्रिपरिषद के 5 निर्णय सार्वजनिक, सरकार विपद व्यवस्थापन में प्रदेश और स्थानीय स्तर में समन्वय करके नियंत्रण खट्टी रहल। कांग्रेस के 15 अधिवेशन में उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा से लोकतांत्रिक संस्कृति बेगार के लोकतंत्र निरस प्रक्रिया केल रहल वहां के कहाई। जेन्जी आन्दोलन संघे छानबिन समिति के प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाइन। मन्त्री परिषदको निर्णय हो। आगामी 16 मंसिर से प्रणालीमा 10 राष्ट्रिय खेलकुदमा 32 थो खेल प्रतिस्पर्धा हुन। बकलत थारू भाषा खोज खबर अत्रै और समाचार 6 बजे नेपाली भाषामा खोज खबर सुन सकबी। अबकी खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुतु। सामुदायिक रेडियो टिका प्रयाक्रम सुन्त्र विराम राम।
14: साधारण सभा सम्बन्धी जरूरी सूचना। टिकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुरको 15 वार्षिक तथा 5 चुनावी साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि। स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टिकापुर। जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुर कैलाली।
15: पढाई छुट्यो साथी छुटे सबै छुटे।

0: नाई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वहाँ नन्दी भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनी पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आठ कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस्त वहाँ रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएको आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएको ल बाटी
1: ए ले ले ठिक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261

0: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होस्या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
3: मै नै जाइँ, उहाँ आफ्न अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर छु।
2: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादो, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
1: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
5: साधारण सभा संबंधी जरूरी सूचना। टीकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुरको 15 वार्षिक तथा 5 चुनावी साधारण सभा निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि। स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टीकापुर। जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुर कैलाली।
6: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनैला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541426
4: जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुर कैलालीको 9 वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना साना किसानका लागि लगानी ल्याउँछौ सुनौलो बिहानी आउँदै गरेको बडा दशैं शुभ दीपावली नेपाल सम्बत एवं छठ पर्वको अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण शेयरधनी शुभचिन्तक पत्रकार समाजसेवी एवं देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यही मिति 2083 साल कार्तिक 8 गते आइतबारका दिन टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा हुन गई श्री जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 9 वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि सादर आमन्त्रण गर्दछौं। स्थान टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहाल समय बिहान 10 बजेदेखि आयोजक जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार टीकापुर कैलाली सम्पर्क फोन नम्बर 091-560-641 मोबाइल नम्बर 98-432-86-713।

0: कबू कापी रहिथ कबू पेन्सिल रहिथ कबू झलै फटाका आजिथ का कना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से त लड़का सामान निहरे
1: ओहो इ बुढा लिख में का हुई जलम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कैठ कबू पेन्सिल हेरा कैठ कबू झोले फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से नानम तो
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेन्सिल हे रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला जस कटरास बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गई संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुर कैलालीको 9 वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना साना किसानका लागि लगानी ल्याउँछौ सुनौलो बिहानी आउँदै गरेको बडा दशैं शुभ दीपावली नेपाल सम्बत एवं छठ पर्वको अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण शेयरधनी शुभचिन्तक पत्रकार समाजसेवी एवं देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यही मिति 2083 साल कार्तिक 8 गते आइतबारका दिन टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा हुन गई श्री जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 9 वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि सादर आमन्त्रण गर्दछौं। स्थान टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहाल समय बिहान 10 बजेदेखि आयोजक जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार टीकापुर कैलाली सम्पर्क फोन नम्बर 091-560-641 मोबाइल नम्बर 98-432-86-713।